0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I'm Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
1: the Indian Coast Guard has invited applications for filling up various civilian posts on deputation, including short-term contract basis, for an initial period of 2 years. The vacancies include civilian staff officer logistics, section officer, chief draftsman, personal assistant, and assistant. The posts are classified under General Central Service Group A and Group B categories, with pay levels ranging from level 6 to level 11. Vacancies are available at locations including Gopalpur, Kochi, Srivijayapuram, Porbandar, Tuticorin, Mumbai, Chennai, Vishakhapatnam, and other Coast Guard stations. Eligible officers should submit applications in the prescribed format along with complete ACRs and APA dossiers of the last 5 years and educational qualifications through proper channel within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For detailed notification and application format, kindly visit the official website at www.indiancoastguard.gov.in. The Income Tax Appellate Tribunal, ITAT, Ministry of Law and Justice, Government of India, has invited online applications from Indian citizens for filling up vacancies for Senior Private Secretary and Private Secretary, Group B, gazetted in various ITAT benches across India. The vacancies include 22 posts of Senior Private Secretary and 20 posts of Private Secretary. The posts carry pay level 8 for Senior Private Secretary and pay level 7 for Private Secretary. Candidates must possess a degree from a recognized university, speed of 120 words per minute in English shorthand, and working knowledge of computers including MS Office, Excel, and related software. The maximum age limit is 35 years, with relaxations as per government rules. Selection will be through written examination, skill test, and personnel interview. For details, kindly look up the website at www.itat.gov.in. I repeat, it is www.itat.gov.in. The Office of the Development Commissioner of Handlooms, Ministry of Textiles, Government of India, has invited applications from eligible officials for filling up various general central service posts on deputation basis. The vacancies include 3 posts of assistant, 3 posts of stenographer grade 1, and 2 of upper division clerk. The posts carry pay scales as per the 7 CPC pay matrix, with assistant and stenographer grade 1 posts in level 6, the upper division clerk post in level 4. Eligible candidates should submit their applications through proper channel in the prescribed format within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For detailed eligibility criteria and application format, kindly visit the official website, that is at www.handlooms.nic.in. The Department of Science and Technology, DST, Ministry of Science and Technology, Government of India, has invited applications for 2 temporary posts of Scientific Attaché Group A, gazetted on deputation, including short-term contract basis, 1 each at the Indian missions in Tokyo, Japan, and Berlin, Germany. The posts carry pay level 13A for a period of 3 years. Eligible applicants include scientists, technologists from central or state governments, universities, recognized research institutions, autonomous bodies, and similar organizations. Candidates should possess a doctorate degree in natural or agricultural sciences or master's degree in engineering, technology, or medicine, along with 12 years' experience in research and development, science and technology activities, including 6 years in managerial roles. The maximum age limit is 56 years. Interested candidates must apply online within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly do refer to the website at www.recruitment.dst.gov.in, or you could also go on to www.dst.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
2: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। IREL इंडिया लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। उपप्रबंधक तकनीकी औद्योगिक सुरक्षा, सहायक प्रबंधक तकनीकी औद्योगिक सुरक्षा, सहायक प्रबंधक तकनीकी इंस्ट्रूमेंटेशन, उप महाप्रबंधक तकनीकी आईटी, प्रबंधक तकनीकी आईटी, उप प्रबंधक तकनीकी आईटी तथा उप प्रबंधक तकनीकी जियोलॉजी। इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए नियम, शर्तें, वेतनमान, आरक्षण और तैनाती के स्थान की जानकारी के लिए आप देख सकते हैं विभाग की वेबसाइट www.irel.co.in। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में लेखाधिकारी और सहायक रजिस्ट्रार के पदों को भरा जाना है। शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता, स्कोर कार्ड, चयन प्रक्रिया आदि का विवरण और ऑनलाइन आवेदन भरने का लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है www.svpuat.edu.in। विश्वविद्यालय का भर्ती पोर्टल www.recruitmentsvpuat.in को यदि आप देखेंगे तो उस पर भी ये तमाम जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए आप सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 9429426467। अंतिम तिथि है आवेदन की 3 अगस्त 2026। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा, एसोसिएट प्रोफेसर खेल चिकित्सा, असिस्टेंट प्रोफेसर कोचिंग एथलेटिक्स। गैर शिक्षण पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद हैं परीक्षा उपनियंत्रक, सहायक लाइब्रेरियन, अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, सहायक अनुभाग अधिकारी, फिजियोथेरेपिस्ट, अकाउंटेंट, लाइब्रेरी सहायक और नर्सिंग अटेंडेंट। आवेदन फॉर्म, शुल्क, योग्यता के नियम, आवेदन कैसे करें आदि जैसी जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की वेबसाइट nsu.ac.in। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 60 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इनमें से 24 पद अनारक्षित हैं, 9 पद अनुसूचित जाति के लिए, 5 अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 16, EWS वर्ग के लिए 6 पद आरक्षित हैं। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र के लिए संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध URL लिंक पर आप जा सकते हैं। ये लिंक है fr.iitism.ac.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 30 सितंबर 2026।
3: आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं।
4: ఆరోగ్యం మనవరం ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్స్ చే సలహాలు సూచనలు లభించే మన వేదిక ఆరోగ్యం మనవరం ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం 1 PM to 2 PM మన మీట్స్ 90.8 కమ్యూనిటీ రేడియోలో।

0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I'm Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with the Indian Coast Guard has invited applications for filling up various civilian posts on deputation, including short-term contract basis, for an initial period of 2 years. The vacancies include civilian staff officer logistics, section officer, chief draftsman, personal assistant, and assistant. The posts are classified under General Central Service Group A and Group B categories, with pay levels ranging from level 6 to level 11. Vacancies are available at locations including Gopalpur, Kochi, Srivijayapuram, Porbandar, Tuticorin, Mumbai, Chennai, Vishakhapatnam, and other Coast Guard stations. Eligible officers should submit applications in the prescribed format along with complete ACRs and APA dossiers of the last 5 years and educational qualifications through proper channel within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For detailed notification and application format, kindly visit the official website at www.indiancoastguard.gov.in. The Income Tax Appellate Tribunal, ITAT, Ministry of Law and Justice, Government of India, has invited online applications from Indian citizens for filling up vacancies for Senior Private Secretary and Private Secretary, Group B, gazetted in various ITAT benches across India. The vacancies include 22 posts of Senior Private Secretary and 20 posts of Private Secretary. The posts carry pay level 8 for Senior Private Secretary and pay level 7 for Private Secretary. Candidates must possess a degree from a recognized university, speed of 120 words per minute in English shorthand, and working knowledge of computers including MS Office, Excel and related software. The maximum age limit is 35 years, with relaxations as per government rules. Selection will be through written examination, skill test and personnel interview. For details, kindly look up the website at www.itat.gov.in. I repeat, it is www.itat.gov.in. The Office of the Development Commissioner of Handlooms, Ministry of Textiles, Government of India, has invited applications from eligible officials for filling up various general central service posts on deputation basis. The vacancies include 3 posts of assistant, 3 posts of stenographer grade 1, and 2 of upper division clerk. The posts carry pay scales as per the 7 CPC pay matrix, with assistant and stenographer grade 1 posts in level 6. The upper division clerk post in level 4. Eligible candidates should submit their applications through proper channel in the prescribed format within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For detailed eligibility criteria and application format, kindly visit the official website, that is at www.handlooms.nic.in. The Department of Science and Technology, DST, Ministry of Science and Technology, Government of India, has invited applications for 2 temporary posts of Scientific Attaché Group A, gazetted on deputation, including short-term contract basis, 1 each at the Indian missions in Tokyo, Japan, and Berlin, Germany. The posts carry pay level 13A for a period of 3 years. Eligible applicants include scientists, technologists from central or state governments, universities, recognized research institutions, autonomous bodies, and similar organizations. Candidates should possess a doctorate degree in natural or agricultural sciences or master's degree in engineering, technology or medicine, along with 12 years experience in research and development, science and technology activities, including 6 years in managerial roles. The maximum age limit is 56 years. Interested candidates must apply online within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly do refer to the website at www.recruitment.dst.gov.in, or you could also go on to www.dst.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। IREL इंडिया लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। उपप्रबंधक तकनीकी औद्योगिक सुरक्षा, सहायक प्रबंधक तकनीकी औद्योगिक सुरक्षा, सहायक प्रबंधक तकनीकी इंस्ट्रूमेंटेशन, उप महाप्रबंधक तकनीकी आईटी, प्रबंधक तकनीकी आईटी, उप प्रबंधक तकनीकी आईटी तथा उप प्रबंधक तकनीकी जियोलॉजी। इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए नियम, शर्तें, वेतनमान, आरक्षण और तैनाती के स्थान की जानकारी के लिए आप देख सकते हैं विभाग की वेबसाइट www.irel.co.in। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में लेखाधिकारी और सहायक रजिस्ट्रार के पदों को भरा जाना है। शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता, स्कोर कार्ड, चयन प्रक्रिया आदि का विवरण और ऑनलाइन आवेदन भरने का लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है www.svpuat.edu.in। विश्वविद्यालय का भर्ती पोर्टल www.recruitmentsvpuat.in को यदि आप देखेंगे तो उस पर भी ये तमाम जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए आप सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 9429426467। अंतिम तिथि है आवेदन की 3 अगस्त 2026। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा, एसोसिएट प्रोफेसर खेल चिकित्सा, असिस्टेंट प्रोफेसर कोचिंग एथलेटिक्स। गैर शिक्षण पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद हैं परीक्षा उपनियंत्रक, सहायक लाइब्रेरियन, अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, सहायक अनुभाग अधिकारी, फिजियोथेरेपिस्ट, अकाउंटेंट, लाइब्रेरी सहायक और नर्सिंग अटेंडेंट। आवेदन फॉर्म, शुल्क, योग्यता के नियम, आवेदन कैसे करें आदि जैसी जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की वेबसाइट nsu.ac.in। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 60 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इनमें से 24 पद अनारक्षित हैं, 9 पद अनुसूचित जाति के लिए, 5 अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 16, EWS वर्ग के लिए 6 पद आरक्षित हैं। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र के लिए संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध URL लिंक पर आप जा सकते हैं। ये लिंक है fr.iitism.ac.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 30 सितंबर 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं।
2: ఆరోగ్యం మనవరం ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్స్ చే సలహాలు సూచనలు లభించే మన వేదిక ఆరోగ్యం మనవరం ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం 1 PM to 2 PM మన మీట్స్ 90.8 కమ్యూనిటీ రేడియోలో

मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। शायद ही कोई भारतीय हो सकता है जिसको हमारे सशस्त्र बलों पर, हमारे सेना के जवानों पर गर्व न हो। प्रत्येक भारतीय, चाहे वो किसी भी क्षेत्र, जाति, धर्म, पंथ या भाषा का क्यों न हो, हमारे सैनिकों के प्रति अपनी खुशी अभिव्यक्त करने और समर्थन दिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कल भारत के 125 करोड़ देशवासियों ने पराक्रम पर्व मनाया था। हमने 2016 में हुई उस सर्जिकल स्ट्राइक को याद किया जब हमारे सैनिकों ने हमारे राष्ट्र पर आतंकवाद की आड़ में प्रॉक्सी वॉर की दुष्टता करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। देश में अलग अलग स्थानों पर हमारे सशस्त्र बलों ने एग्जीबिशंस लगाए ताकि अधिक से अधिक देश के नागरिक, खासकर युवा पीढ़ी, यह जान सके कि हमारी ताकत क्या है, हम कितने सक्षम हैं और कैसे हमारे सैनिक अपनी जान जोखिम में डाल करके हम देशवासियों की रक्षा करते हैं। पराक्रम पर्व जैसा दिवस युवाओं को हमारी सशस्त्र सेना के गौरवपूर्ण विरासत की याद दिलाता है और देश की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हमें प्रेरित भी करता है। मैंने भी वीरों की भूमि राजस्थान के जोधपुर में एक कार्यक्रम में भाग लिया। अब यह तय हो चुका है कि हमारे सैनिक उन सबको मुंहतोड़ जवाब देंगे जो हमारे राष्ट्र में शांति एवं उन्नति के माहौल को नष्ट करने का प्रयास करेंगे। हम शांति में विश्वास करते हैं और इसे बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन सम्मान से समझौता करके और राष्ट्र की संप्रभुता की कीमत पर कतई नहीं। भारत सदा ही शांति के प्रति वचनबद्ध और समर्पित रहा है। 20वीं सदी में 2 विश्व युद्धों में हमारे 1 लाख से अधिक सैनिकों ने शांति के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और यह तब जब हमारा उस युद्ध से कोई वास्ता नहीं था, हमारी नजर किसी और की धरती पर कभी भी नहीं थी। यह तो शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी। कुछ दिन पहले ही 23 सितंबर को हमने इजराइल में हैफा की लड़ाई के 100 वर्ष पूरे होने पर मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर लैंसर्स के हमारे वीर सैनिकों को याद किया जिन्होंने आक्रांताओं से हैफा को मुक्ति दिलाई थी। यह भी शांति की दिशा में हमारे सैनिकों द्वारा किया गया एक पराक्रम था। आज भी यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग पीस कीपिंग फोर्सेस में भारत सबसे अधिक सैनिक भेजने वाले देशों में से एक है। दशकों से हमारे बहादुर सैनिकों ने ब्लू हेलमेट पहन विश्व में शांति कायम रखने में अहम भूमिका निभाई है। मेरे प्यारे देशवासियों, आसमान की बातें तो निराली होती ही हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आसमान में अपनी शक्ति का परिचय देकर के भारतीय वायुसेना ने हर देशवासी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, हमें सुरक्षा का एहसास दिलाया है। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान लोगों को परेड के जिन हिस्सों की सबसे बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है, उनमें से एक है फ्लाई पास्ट, जिसमें हमारी एयरफोर्स हैरतअंगेज कारनामों के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। 1947 में जब पाकिस्तान के हमलावरों ने एक अप्रत्याशित हमला शुरू किया तो यह वायुसेना ही थी जिसने श्रीनगर को हमलावरों से बचाने के लिए यह सुनिश्चित किया कि भारतीय सैनिक
और उपकरण युद्ध के मैदान तक समय पर पहुंच जाए। वायुसेना ने 1965 में भी दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। 1971 बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई कौन नहीं जानता है। 1999 करगिल के घुसपैठियों के कब्जे से मुक्त कराने की भी वायुसेना की भूमिका अहम रही। टाइगर हिल में दुश्मनों के ठिकानों पर रात दिन बमबारी कर वायुसेना ने उन्हें धूल चटा दी। राहत एवं बचाव कार्य हो या फिर आपदा प्रबंधन, हमारे एयर वॉरियर्स उनके सराहनीय कार्य को लेकर देश वायुसेना के प्रति कृतज्ञ है। तूफान, बवंडर, बाढ़ से लेकर जंगल की आग तक की प्राकृतिक आपदा से निपटने और देशवासियों की मदद करने का उनका जज्बा अद्भुत रहा है। देश में जेंडर इक्वलिटी यानी स्त्री और पुरुष की समानता सुनिश्चित करने में एयरफोर्स ने मिसाल कायम की है और अपने प्रत्येक विभाग के द्वार देश की बेटियों के लिए खोल दिए हैं। अब तो वायुसेना महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन के साथ परमानेंट कमीशन का विकल्प भी दे रही है और जिसकी घोषणा इसी साल 15 अगस्त को मैंने लाल किले से की थी। भारत गर्व से कह सकता है कि भारत की सेना में, सशस्त्र बलों में पुरुष शक्ति ही नहीं स्त्री शक्ति का भी उतना योगदान बनता जा रहा है। नारी सशक्त तो है, अब सशस्त्र भी बन रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों नेवी के हमारे एक अधिकारी अभिलाष टॉमी वो अपने जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे। पूरा देश चिंतित था कि टॉमी को कैसे बचाए लिए जाए। आपको पता है अभिलाष टॉमी एक बहुत साहस वीर अधिकारी है। वे अकेले कोई भी आधुनिक टेक्नोलॉजी बिना की एक छोटी सी नाव लेकर के विश्व भ्रमण करने वाले पहले भारतीय थे। पिछले 80 दिनों से वे दक्षिण हिंद महासागर में गोल्डन ग्लोब रेस में भाग लेने, समंदर में अपनी गति को बनाए होते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन भयानक समंदर तूफान ने उनके लिए मुसीबत पैदा की। लेकिन भारत की नौसेना का ये वीर समुंदर के बीच अनेक दिनों तक जूझता रहा, जंग करता रहा। वो पानी में बिना खाए पिए लड़ता रहा, जिंदगी से हार नहीं मानी। साहस, संकल्प शक्ति, पराक्रम एक अद्भुत मिसाल। कुछ दिन पहले मैंने जब अभिलाष को समुंदर से बचा करके बाहर ले आए तो टेलीफोन पर बात की। पहले भी टॉमी से मैं मिल चुका था। इतने संकट से बाहर आने के बाद भी उनका जो जज्बा था, उनका जो हौसला था और फिर एक बार ऐसा ही कुछ पराक्रम करने का जो संकल्प उन्होंने मुझे बताया, देश की युवा पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा है। मैं अभिलाष टॉमी की उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं और उनका ये साहस, उनका पराक्रम, उनकी संकल्प शक्ति, जूझने की और जीतने की ताकत हमारे देश की युवा पीढ़ी को जरूर प्रेरणा देगी। मेरे प्यारे देशवासियों, 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्र के लिए इस दिन का क्या महत्व है, इसे बच्चा बच्चा जानता है। इस वर्ष का 2 अक्टूबर का और एक विशेष महत्व है। अब से 2 साल के लिए हम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के निमित्त विश्व भर में अनेक विध कार्यक्रम करने वाले हैं। महात्मा गांधी के विचार ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। डॉक्टर मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला जैसी महान विभूतियां, हर किसी ने गांधी जी के विचारों से शक्ति पाई और अपने लोगों को समानता और सम्मान का हक दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ सके। आज के मन की बात में मैं आपके साथ पूज्य बापू के एक और महत्वपूर्ण कार्य की चर्चा करना चाहता हूं, जिसे अधिक से अधिक देशवासियों को जानना चाहिए। 1941 में महात्मा गांधी ने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम यानी रचनात्मक कार्यक्रम के रूप में कुछ विचारों को लिखना शुरू किया। बाद में 1945 में
जब स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा तब उन्होंने उस विचार की संशोधित प्रति तैयार की। पूज्य बापू ने किसानों, गांवों, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, स्वच्छता, शिक्षा के प्रसार जैसे अनेक विषयों पर अपने विचारों को देशवासियों के सामने रखा है। इसे गांधी चार्टर भी कहते हैं। पूज्य बापू लोक संग्राहक थे। लोगों से जुड़ जाना और उन्हें जोड़ लेना बापू की विशेषता थी। यह उनके स्वभाव में था। यह उनके व्यक्तित्व की सबसे अनूठी विशेषता के रूप में हर किसी ने अनुभव किया है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव कराया कि वह देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और नितांत आवश्यक है। स्वतंत्रता संग्राम में उनका सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि उन्होंने इसे एक व्यापक जन आंदोलन बना दिया। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में महात्मा गांधी के आह्वान पर समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों ने स्वयं को समर्पित कर दिया। बापू ने हम सबको एक प्रेरणादायक मंत्र दिया था जिसे अक्सर गांधी जी का तलिस्मान के नाम से जाना जाता है। उसमें गांधी जी ने कहा था, मैं आपको एक जंतर देता हूं, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी अजमाओ, जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त हो रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, गांधी जी का यह जंतर आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज देश में बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग, बढ़ती हुई इसकी आर्थिक शक्ति, बढ़ता हुआ परचेजिंग पावर, क्या हम कुछ भी खरीदारी के लिए जाएं तो पल भर के लिए पूज्य बापू को स्मरण कर सकते हैं? पूज्य बापू के उस जंतर का स्मरण कर सकते हैं? क्या हम खरीदारी करते समय सोच सकते हैं कि मैं जो चीज खरीद रहा हूं उससे मेरे देश के किस नागरिक का लाभ होगा, किसके चेहरे पर खुशी आएगी, कौन भाग्यशाली होगा जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी खरीदी से लाभ होगा, और गरीब से गरीब को लाभ होगा तो मेरी खुशी अधिक से अधिक होगी। गांधी जी के जंतर को याद करते हुए आने वाले दिनों में हम जब भी कुछ खरीद करें, गांधी 150 जब मनाते हैं तब हम जरूर देखें कि हमारी हर खरीदी में किसी न किसी देशवासी का भला होना चाहिए, और उसमें भी जिसने अपना पसीना बहाया है, जिसने अपने पैसे लगाए हैं, जिसने अपनी प्रतिभा खपाई है, उन सबको कुछ न कुछ लाभ होना चाहिए। अपने पैसे लगाए हैं, जिसने अपनी प्रतिभा खपाई है, उन सबको कुछ न कुछ लाभ होना चाहिए। यही तो गांधी का जंतर है, यही तो गांधी का संदेश है। और मुझे विश्वास है कि जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी, उसके जीवन में आपका एक छोटा सा कदम बहुत बड़ा परिणाम ला सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब गांधी जी ने कहा था कि सफाई करोगे तो स्वतंत्रता मिलेगी, शायद उनको मालूम भी नहीं होगा कि कैसे होगा, पर यह हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिली। इसी तरह आज हमको लग सकता है कि मेरे इस छोटे से कार्य से भी मेरे देश की आर्थिक उन्नति में, आर्थिक सशक्तिकरण में, गरीब को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत देने में मेरा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और मैं समझता हूं कि आज के युग की यही सच्ची देशभक्ति है, यही पूज्य बापू को कार्यांजलि है। जैसे विशेष अवसरों पर खादी और हैंडलूम के उत्पाद खरीदने के बारे में सोचें, इसे अनेक मिलेगी। कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी खादी के पुराने या कटे फटे वस्त्रों को भी इसलिए सहज कर रखते थे क्योंकि उसमें किसी का परिश्रम छुपा होता है। वे कहते थे ये सब
खादी के कपड़े बड़ी मेहनत से बनाए हैं, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। देश से लगाव और देशवासियों के प्रेम की यह भावना छोटे से कद काठी वाले उस महामानव के रग रग में रची बसी थी। दो दिन बाद पूज्य बापू के साथ ही हम शास्त्री जी की भी जयंती मनाएंगे। शास्त्री जी का नाम आते ही हम भारतवासियों के मन में एक असीम श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनका सौम्य

0: व्यक्तित्व हर देशवासी को सदा ही गर्व से भर देता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की यह विशेषता थी कि बाहर से वे अत्यधिक विनम्र दिखते थे, परंतु भीतर से चट्टान की तरह दृढ़ निश्चयी थे। जय जवान जय किसान का उनका नारा उनके इसी विराट व्यक्तित्व की पहचान है। राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ तपस्या का ही प्रतिफल था कि लगभग 1.5 वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में वे देश के जवानों और किसानों को सफलता के शिखर पर पहुंचने का मंत्र दे गए। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जब हम पूज्य बापू का स्मरण कर रहे हैं तो बहुत स्वाभाविक है कि स्वच्छता की बात के बिना रह नहीं सकते। 15 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा एक अभियान प्रारंभ हुआ। करोड़ों लोग इस अभियान में जुड़े और मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं दिल्ली के अंबेडकर स्कूल में बच्चों के साथ स्वच्छता श्रमदान करूं। मैं उस स्कूल में गया जिनकी नींव खुद पूज्य बाबा साहब ने रखी थी। देश भर में हर तबके के लोग इस 15 तारीख को इस श्रमदान से जुड़े। संस्थाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया। स्कूली बच्चों, कॉलेज के छात्रों, एनसीसी, एनएसएस, युवा संगठन, मीडिया ग्रुप्स, कॉरपोरेट जगत, सभी ने बड़े पैमाने पर स्वच्छता श्रमदान किया। मैं इसके लिए इन सभी स्वच्छता प्रेमी देशवासियों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आइए सुनते हैं एक फोन कॉल।
1: नमस्कार, मेरा नाम शैतान सिंह, गांव असपरा, जिला बीकानेर, तहसील पूगल और राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं ब्लाइंड व्यक्ति हूँ, दोनों आंखों से मुझे दिखाई नहीं देता है, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मन की बात में, जो स्वच्छ भारत का जो मोदी जी ने कदम उठाया था बहुत ही बढ़िया है। हम ब्लाइंड लोग सड़क में जाने के लिए परेशान होते थे, अभी क्या है हर घर में शौचालय बन चुका है, तो हमारा बहुत बढ़िया फायदा हुआ इसमें। ये कदम बहुत ही बढ़िया उठाया था और आगे चलता रहे ये काम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़ी बात कही। हर किसी के जीवन में स्वच्छता का अपना महत्व है और स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपके घर में शौचालय बना और उससे अब आपको सुविधा हो रही है, हम सबके लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। और शायद इस अभियान से जुड़े लोगों को भी अंदाज नहीं होगा कि एक प्रज्ञाचक्षु होने के नाते आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन शौचालय न होने के पहले आप कितनी दिक्कतों से जीवन गुजारते थे और शौचालय होने के बाद आपके लिए कितना बड़ा वरदान बन गया। शायद आपने भी इस पहलू को जोड़ते हुए फोन न किया होता तो शायद स्वच्छता के इस अभियान से जुड़े लोगों के ध्यान में भी ऐसा संवेदनशील पहलू ध्यान न आता। मैं आपके फोन के लिए विशेष रूप से आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ भारत मिशन केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक सफल कहानी बन चुका है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। इस बार भारत इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सम्मेलन आयोजित कर रहा है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन यानी महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन, दुनिया भर के सैनिटेशन मिनिस्टर्स और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ एक साथ आकर स्वच्छता से जुड़े अपने प्रयोग और अनुभव साझा कर रहे हैं। महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन का समापन 2 अक्टूबर 2018 को बापू के 150वें जयंती समारोह के शुभारंभ के साथ होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, संस्कृत की एक उक्ति है, न्याय मूलम स्वराज्यम सयात, अर्थात स्वराज के मूल में न्याय होता है। जब न्याय की चर्चा होती है तो मानव अधिकार का भाव उसमें पूरी तरह से समाहित रहता है। शोषित, पीड़ित और वंचित जनों की स्वतंत्रता, शांति और उन्हें न्याय सुनिश्चित कराने के लिए ये विशेष रूप से अनिवार्य है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान में गरीबों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। उन्हीं के विजन से प्रेरित होकर 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC का गठन किया गया था। कुछ ही दिनों बाद NHRC के 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं। NHRC ने न सिर्फ मानव अधिकारों की रक्षा की बल्कि मानवीय गरिमा को भी बढ़ाने का काम किया है। हमारे प्राण प्रिय नेता, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मानव अधिकार हमारे लिए कोई पराई अवधारणा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतीक चिन्ह में वैदिक काल का आदर्श सूत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः अंकित है। NHRC ने मानव अधिकारों को लेकर व्यापक जागरूकता पैदा की है, साथ ही इसके दुरुपयोग को रोकने में भी सराहनीय भूमिका निभाई है। 25 साल की इस यात्रा में उसने देशवासियों में एक आशा, एक विश्वास का वातावरण पैदा किया है। एक स्वस्थ समाज के लिए, उत्तम लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी आशास्पद घटना है। आज राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के काम के साथ साथ 26 राज्य मानवाधिकार आयोग भी गठन किया है। एक समाज के रूप में हमें मानवाधिकारों के महत्व को समझने और आचरण में लाने की आवश्यकता है। यही सबका साथ सबका विकास का आधार है। मेरे प्यारे देशवासियों, अक्टूबर महीना हो, जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती हो, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की जन्म शताब्दी वर्ष का प्रारंभ होता हो, ये सभी महापुरुष हम सबको प्रेरणा देते रहे हैं, उनको हम नमन करते हैं। और 31 अक्टूबर सरदार साहब की जयंती है। मैं अगली मन की बात में विस्तार से बात करूंगा, लेकिन आज मैं जरूर इसलिए उल्लेख करना चाहता हूं कि कुछ वर्षों से सरदार साहब की जन्म जयंती पर 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी हिंदुस्तान के हर छोटे मोटे शहर में, कस्बों में, गांवों में एकता के लिए दौड़, इसका आयोजन होता है। इस वर्ष भी हम प्रयत्नपूर्वक अपने गांव में, कस्बे में, शहर में, महानगर में रन फॉर यूनिटी को ऑर्गेनाइज करें। एकता के लिए दौड़, यही तो सरदार साहब का, उनको स्मरण करने का उत्तम मार्ग है, क्योंकि उन्होंने जीवन पर देश की एकता के लिए काम किया। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी के जरिए समाज के हर वर्ग को, देश की हर इकाई को एकता के सूत्र में बांधने के हमारे प्रयासों को हम बल दें, और यही उनके लिए अच्छी श्रद्धांजलि होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, नवरात्रि हो, दुर्गा पूजा हो, विजयादशमी हो, इस पवित्र पर्वों के लिए मैं आप सबको हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम अश्विनी कुमार मौदगिल है। मैं लगभग 40-45 साल से खेती कर रहा हूँ। फसल बीमा योजना हमें मुआवजा जो देती है उससे हमारी मदद हो जाती है। मेरे को खरीफ 2023 में 2,80,000 रुपया मिला इसका। हमारे इर्द गिर्द किसान है, उनको हम कहते हैं कि आप भी बीमा कराओ तो उसका आपको भी फायदा मिलेगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: नमस्ते डियर लिसनर्स, वेलकम टू मिट्स कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM, द वॉइस ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट। आई एम योर होस्ट आरजे संजना, एंड टुडे वी कम टुगेदर टू डिस्कस ए टॉपिक दैट कंसर्न्स एवरी फैमिली, एवरी कम्युनिटी एंड एवरी नेशन, वुमेन्स सेफ्टी। A woman is the first teacher of a child, the strength of a family, and an essential contributor to society. Yet, despite tremendous progress in education, technology, and economic development, many women still face fear, discrimination, harassment, and violence in different stages of life. Women's safety is not only about protecting women on streets. It begins at home, continues in schools and workplaces, extends to public spaces, and reflects the values of an entire society. A nation can truly call itself developed only when every